0: यही हेरेर जिन्दगी जाने भयो।
1: बाबा मेरो अब यही छ सानो काम के गरौँ त, के जुमा मार्नु भएन यहाँ माया निक्लिएर

0: क्यों नाम दियो आवाज ऊपर दियो ठीक है क्यों दर्शन दिया सो रहे भाईल को दिया दियो
1: You should do it.

खाना के मौसम सही पे सही है खाना के तो बिहानी के लिए तो राहुल जी की बने तो ऐसे